अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राहत फतेह अली खान और ये है उजाला रेडियो। उजाला रेडियो को सुनते रहिए और मधुर मधुर संगीत जो है वो सुनते रहिए उजाला रेडियो पे, और मेरे भी गाने सुनिए, औरों के भी सुरीले गाने सुनिए।

0: उजाला रेडियो देश भर में, तू जाने तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में, हाँ हर गांव में हर एक कोना में ऑटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो DAB प्लस के जरिए उजाला इस वन हेल नहीं लॉन्ग तू जाने तो ढिंढोरा बजा दीजिए।
1: Klaar voor de volgende stap?
0: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl. अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूडियो ईमेल नर info@ujala.nl info@ujala.nl 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो।

और अब तो ये जीना तेरे बिना एक सजा है यार, सजा है तेरे बिना, ये जीना सजा है तेरे बिना। जुनिता गांधी की आवाज में आप सुने उजाला रेडियो पर।

में पिघल जाओगे। इलास्टेड नार उजाला रेडियो फॉर इंफॉर्मेशन कैक ऑप www.ujala.nl एंड न्यू ज़हब हसन मैं जाना जिंदगी से नहीं जाना।

जाना, जिंदगी से नहीं जाना, कभी नहीं जाना, नेवर। अब इतना सुंदर गीत के बाद मैं तो कहूंगा कि कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, क्या कहना है और क्या सुनना है।

ओके उजाला रेडियो यह प्रिय सुनने वालों लाइव कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आपका हमारा साथ थोड़ा देर तक रहेगा नॉर्मली तरह हो रही है मैं अली मार मैथन कॉफी एंड चाय मैट लॉयड महावीर आज ना आज खाली कॉफी की हम बोली आज खाली चाय एक वेनी तो लॉयड द कॉफी इज ऑफ एक द बेल मायना फल आज खाली कॉफी एंड दो द वेक्स नेचुरली कॉफी एंड चाय दोस्त कलियां हम घूमत रही कहूं पे तुम घूम लेना तो लक सदीचर के दिन En dan kom je mensen tegen en werkelijk iedereen in heel Nederland die luistert naar Koffie en Chai. Dus daar zijn we ontzettend blij mee. Je etena lok sunega, Koffie en Chai. Gali gali ham jaila, dur dur jaila. En ik ken die mensen echt niet hoor, maar die mensen spreken me aan of ze horen mijn stem en ze zeggen van hey, toke hem chinila. Tuto radio me batiaiga, ujala radio pe batiaiga, toke hem sunila. En een van die mannen zei gisteren tegen mij van ja, een bus met Jalaila. Ieder uit haar Jalaila samaan leveren, kare. Maar als koffie en chai er is, dan stap ik niet uit de bus. Dan blijf ik gewoon in de bus zitten. Ja, hij zei, hoe wega, ja. Ham na bolila. Ham toke bataila, kunchi admi ham me bolega. Leuk. Oka hai maili bati ya pe, dan ja gewoon. Omdat ham me haiga, ek ghanta. Ek ghanta ham me hega samay. Dus ek ghanta ham tor saad debe. और तू हमारे साथ दी है उजाला रेडियो पर यार आई का महीना है या आधा बरिस जोन हैगा 2027 के दोन हो गया हैगा तो आधा बरिस जोन अब बाकी बा लातो दतन ना यार मैं साले ना फंटास्टिस हाल्फ यार मार्कर एस्टा हाल्फ यार में तोर कुछ ना लुक भल कुछ गड़बड़ाल बा गिव द मूड न्यू अप गोन दोर खा हम लोग बात ही ना यार साथ ही साथ जैसे तू सोच ले रही ले हरदम ऐसे ना हो गएगा जीवन में कभी कभी कुछ ऐसे हो जाएगा जो तू ना मांगत रहे जो तू ना सोच ले रही ले माया दैट्स लाइफ और बैठ लाइफ आधा बरिस बीत गए है दुस मस्किन है पिया ये दूल फंदे चार आल बराए हाँ मस्किन सा किया ये फन ना मांग अबे हमें कुछ ना कुछ कमती बा और कुछ हम करे मांगेला इस साल में तो अबे देर ना है अबे आधा बरिस है यार आधा बरिस जाने कितना दिन हैगा 180 dagen, zeg ik het goed? 360, nou ja, 180 dagen, zeg je. Ojada zelfs. Zoveel dagen heb je de tijd nog. Kuchkar. Or hamesha Ujala Radio sun je natuurlijk. Trouwens, de stem die we net hoorden was van een Virej. Ook er bare mee aan bataise kila kuchacha. Van de formatie Sensation. Ohu rehiga trouwens, Brasa Melape. Virej bhi rahega wahan pe. Mad Sensation. Brasa Fest hume bole ke chahega. Brasafest.nl tu jai ke dekh le. Brasafest.nl Hangama yaar, bahut jabardast program aayega. Aur kya kya hai apna agli baat hi dekhi to. Volgens mij heb ik een verkeerd nummer opgezet hoor. Want Iwali hebben we hier gekeken. Dus om niet kan je naar Kelis. Ah, ham je ulta knop pe druk kar hebben. Dan gaat hij niet spelen. Ik ga gewoon wat artiesten de revue laten passeren. Die erbij zijn allemaal op Brazzafest. Brazzafest.nl to dekle. Ja, to direct. Surf er meteen naartoe. Naar Brazzafest.nl. En toen zocht je het hier kaise liki. Ga gewoon naar de Facebookpagina van Ujala. Ujala.nl, toen waren we dicht geleden. Brasafest.nl. Ik wil linkje hega. Maar toen ik dat je doet dicht geleden, die website ben, dan ben je meteen verkocht. Ham toke beloofd karila, ham toke die mantra dela, dawat dela, om te gaan kijken. En zij is er ook bij hoor. Dit is trouwens de stem van Rani. Zij is er ook bij. नहीं ला सब आर्टिस्ट हम चला आपकी ना आज कोशिश करे जैसी साल मालदार योहर साल मालदार अब एक फेस्टिवल सबसे बड़का फेस्टिवल इस साल के सबसे बड़का हिंदुस्तानी फेस्टिवल 2026 के एंड नेचुरली मुझे इधर बाय सेन नेचुरली विल यू दिस नहीं मिस सनीचर 29 अगस्तस या सैटरडे 29 अगस्तस एंड zondag 30 augustus. Doei din. Jabberjust.
जबरदस्त प्रोग्राम आप देखेंगे, सुनेंगे, हमारा साथ बनाएंगे, हम लोग आपके साथ रचाएंगे वहाँ देन हाँ शहर में यार दहेज और कहाँ पे हो सकेगा, जहाँ हिंदुस्तानी के हम लोग के खोता है यार, या तो दनहा शहर में, और वो भी एक बहुत ही जबरदस्त बहुत ही सुंदर लोकासी में। लोकासी के नाम तू देख ले, तू गूगल कर ले, या तो हम लोग के वेबसाइट पे देख ले, जिया जिया KER, वहाँ पे उजाला को मंदिर यार बहुत एक्टिविटी करेगा दोस्तों के आवेग परी तो के देखे परी जैसे विजय बोलेगा जिया इवेंट सेंटर, तू गूगल करके देख ले या तो चल जा ब्रासा फेस्ट पे इंटरनल पे और तू देख ले। दोस्त रानी इस रोग भाई सुन ले तो कितना मोई गावेगा छोड़िया मैं देख से इस रोग भाई और देखी तो दमू देखे इवेंट चस वेलो बतियो इसको नो पियो दरके या इसीर खां वदान बूम सही से रोग भाई। En ik hoop dat mijn playlist alle andere mensen ook bevat. En anders gaan we links en rechts eventjes erbij moeten zoeken. Jaldi, jaldi. Ujala Radio. Live karikram. Jij hebt er eerst zonne valo. En zij is er ook bij. Videsh ke tu sun le to. Rani ke sun le. Ab tu sunega Roshana ke. Roshana bhi rahega live on stage.

0: तू देख ले यार brazzafest.nl.
1: Now I don't want to go back. Fall in love with she. I come down to Trinidad and see a sweet lady.
0: Programa jo hai ga lamba chaura hai ga be aapke hum bataila. कौन कौन बेंचेस खेलेगा अल टॉप फॉर्मेसीज सब जबर जबर फॉर्मेसीज जो है नीदरलैंड में सब वहां पे रहेगा अख्तर अलकार इको नामी सी हाईगा ससेंदर अलमा अल टॉप फॉर्मेसीज दिए फर्दीनन हम ऑफ सोन स्टेज पे स्टैंड ब्रसा फेस्ट के मेन स्टेज पे वहां पे रहेगा दुई गो हाल दो एरियाज हाल एन जो हैगा बहुत लंबा चौड़ा बड़का स्टेज ओमन रहेगा भी और एक तीसरा हाल जोन हैगा वो रहेगा एक्ट फूड कोर्ट ओकर मतलब हैगा फूड लाउंज कोर्ट हमें चाहे बोले के तू वहां पे लाउंज कर सकेगा तू वहां पे अपन खाना पीना खाइए और तू कुर्सी तफरा तोड़ खाती रहेगा वहां पे जहां पे तू रोस्तक से बैठ के ई फंचस खाई सकेगा अपन परिवार के साथ मैं जफरीन डोंट मिस दिस हियर विल यू एफ बाय साइन विद द होल फैमिली. Het is natuurlijk een familiefestival. Dat houdt in dat iedereen welkom is. De kinderen zijn welkom, maar ook Aji Aja.

Sneetjeur, 29 augustus. Or het waar. Zondag, 30 augustus. Den Haagse Hermes. Indoor. Ekdom ander rahega dus. Chahe krap weer, chahe mooi weer. Perfect. Ekdom perfect. Khana pina, allerlei standjes erbij. Alle topartiesten zijn erbij. सुजल की आवाज में आप सुनेगा है सर भाई नतुलक लाइव ऑन स्टेज ही ला देगा लोंडवा बहुत मोई गाइस ना ये गनवा हम जाने ला ब्याह के गाना बा मम मोई लगेगा सुनत

के तू भी सुनिए अच्छा लाइव ऑन स्टेज ई देखी के बा यार वट इज दिट दिट इज नहीं दिट इज फ्रकेट नंबर दिस ई वाली पे हमें ना चाहिए जाए कि ना तो ई वाली पे वेल ई वाली वेल देखिए तो इवन जस्ट कैसे गनवा शुरू होगा

Allemaal op één festival. Het grootste Hindoestaans festival. Isalke, 2026 keer. Den Haag शहर में आपके शहर में यार Den Haag शहर में हम लोग आइला Den Haag Den Haag हम आइला तू भी आइए और ये लड़कियां के नाम हम आपके बता दें नहीं तो तू भी सोचिए के गावेगा यार हम ना जानेला सुन ले सुन सुन

खासा फेस्टिवल तो आइए तू जरूर आइए बगैन ये अखेंदा तो नोटेरा नहीं हंत वेंदा हिंदा तो को खुश तस लाऊं तो के बैंड वन बता दे तू सोचे थोड़ी है कौन कौन बैंड खेलेगा तर वो खेलेगा कि ना खेलेगा और वो वाली खेली कि ना खेलेगा वेल हम तो के बोल चुके बाती अलग टॉप फॉर्मेट से सेंडर भाई हमें को लाइस तो के देला छोटा वाली देखो छोटा लाइस बड़का लाइस तू मंगिए जाने दिखाई ना बरासा फेस्ट पे इंटर एक्सक्लूसिव इस सर भाई नेचुरली लाइव ऑन स्टेज उमर एंड स्क्वाड्स इस सर भाई आज फिर दिल को हमने सुजल सूर्य के साथ सूर्य बैठा गाना ग्रुप सुजल उमराव इस रोग भाई एक्सप्रेस यस जब से सारे का मारा कुछ क्रू द लेजेंड्स द बॉयज फ्रॉम द बेलमर यस नटराज के साथ शिवम राजाराम लाइव ऑन स्टेज ब्रासा फेस्ट पर आप सुनेंगे डायमंड्स 2000 या मग नीत ओंद्रेके हम मांगिला खवोन द बैंड किरण केदार की आवाज में आप सुन रहे हैं इस वक्त बैकग्राउंड पर भी Sensation met Vidish. Dan hebben we nog een aantal DJ's, een aantal dansgroepen. Ze zijn er allemaal bij, Sunevalo. DJ Shahid is erbij. Dilse Dance is erbij. Naj Nation is erbij. En natuurlijk ook Varun Kajal, Lundake Naj. Nachania, we hebben het allemaal daar. En we gaan naar een ander nummertje doen. Dus een Sunevalo Samai Kamba. Dus om Ganwan hem mee kaarten te bereiken. Thora kaarten te bereiken, Ganwan. Dus een. Maar dat is niet erg, toch? Hij is erbij. Aan Bolchukli toch, hè, toch? Shivam Rajaram is erbij natuurlijk met Baithag. Hoe heet die groep van hem ook alweer? Natraj.

सारेगामा रेकॉर्ड्स रोशना रानी सुनियर फरदीन विदय कालपू ससेंद्र आलम अलबै अबीद अनुपा हंस डायमंड्स के साथ लेजेंड्स के साथ दुल लेजेंड्स के साथ निजाम फासिल इबो किंग लायो और एक्सप्रेस के साथ मिस्टर ब्लैक मुक्का सिंह मुकेश लेडी संजना द बैंड के साथ किरण केदार मिस अंश बेचून स्टीव केदार यस एंड शिवम राजा राम नाथ लग्नाथ राज के साथ या देश शिवम उमर एंड स्क्वाड्स उमर नथुलक मैथुयाना वशिता सूर्य के साथ सूर्य बैठक गाना ग्रुप के साथ सुझल उमराव लाइव ऑन स्टेज बरासा फेस्ट पर एक्सक्लूसिव के साथ संजय जोधा रणधीर बद्री दीवक सत्विका ब्यूटीफुल बातम प्रोग्राम एरिंग यार ऑल द सिंगर

लाइव ऑन स्टेज ब्रासा फेस्ट पर आप सुनेंगे ये गीत मैथ संजय जो था एक्सक्लूसिव के साथ यस मैथ सन आई म्यूजिक फॉर्मेट से एक्सक्लूसिव लाइव ऑन स्टेज वाओ वट मोमेंट गाट दैट वर्डन हम तो के बिलीव करिला हिला देखो हम लोग यार दन हाँ शहर हम लोग हिला देखो

0: Muka.
1: Muka, sì.
0: Mukesh. Mede formazii Express live on stage.
2: Madhosh hai
0: tai brasa fest natürlich.
2: Charo taraf be khud.
0: Dat wil je allemaal toch niet missen. Gewoon on one stage. One platform. One area. Nee, two areas, ja. Not one area. Two areas. Two days. दो दिन का प्रोग्राम लंबा चौड़ा बहुत ही जबरदस्त आल टॉपर्स आल टॉपर्स बैल का फेडस ब्रासा फेस्ट एंड नेचुरली मग यू दैट नीड मिस इट सबसे बड़का हिंदुस्तानी इवेंट इस साल के इंदौर अंदर में दोस्त ना बाहर यार बाहर लोग की वैसे रिस्को तू जानेगा कभी हवा कभी बरसात कभी गर्मी वही से तदा लेकर मेटल का इन्हें बिगी बिगी बिगी बिगी बड़का वाली हाल में परकेर प्रॉब्लम लोस बहरे तू खोल सकेगा जगह फॉलो तू ओफे से ये खेलने का प्रॉब्लम तू ऑटो से ये खमून तू के जगह मिलेगा बहरे फॉलो सुन गाना मुखा सिंह वाट अ सिंगर यार En in Nederland hebben we een aantal topzangers. Nou, deze hoort er echt bij hoor. En een geweldige formatie ook. Live formatie. Mooi gitaarspel jongens. Willen we toch meemaken live.

तैयार हो जा। सुनने वालों, उजाला ला रहे हैं उजाला ब्रासा मेला फेस्ट इंडोर समर एडिशन डेन हाग में। फूड, म्यूजिक, डांस, शॉप, मार्केट, कल्चर, फैमिली एंटरटेनमेंट, टेस्ट, बॉलीवुड फाइव्स एंड बीट्स। तू तैयार हो जा और जल्दी से अपन टिकट खरीद ले। ब्रासा फेस्ट जादा 29 en zondag 30 augustus. GIA Event Center Den Haag mee. Get your early bird tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brasafest.nl. Brasafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Brasafest.nl.

कल आया था वो आज गया, और जो आज आया है वो कल जाएगा। इसी के साथ सुनिए मृत्यु समाचार।

के साथ गमी है, पैदाइश के साथ मौत। उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार आप सुनिए। अम्स्टर्डम से समस्त परिवार भोला बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए शनिचर को 87 साल के आयु में ज़ीफ़न तख्त ख़ियार और पत्नी श्रीमती कमला भोला कन्हाई का पति लड़कन शारदा धनीराम सिंह भोला, बॉयक भोला, श्यामा भोला और माला भोला के पिता पतो सहायरा भोला भत्तू और तीन दामाद रजेन धनीराम सिंह संदर फान जेल्दरन और रिस्टो लाजारोफ के ससुर सिद्धार्था संजय जोशुआ और सेल्फाना के नाना। अम्स्टर्डम ज़ुइटोस्ट मेयरहॉफ का रहने वाला श्रीमान लेखाराम भोला की मृत्यु अम्स्टर्डम ज़ुइटोस्ट में हो गई है। पहले पारामारिबो कॉर्नेलिया स्ट्रात का रहने वाला था। अम्स्टर्डम से परिवार भोला बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए शनिचर को 87 साल के आयु में ज़ीफ़न तख्त ख़ियार और पत्नी श्रीमती कमला भोला कन्हाई का पति लड़कन शारदा धनीराम सिंह भोला, बॉयक भोला, श्यामा भोला और माला भोला के पिता पतो सहायरा भोला भत्तू और तीन दामाद रजेन धनीराम सिंह सांदर फान जेल्दरन और रिस्टो लाजारोफ के ससुर सिद्धार्था संजय जोशुआ और सेल्फाना के नाना। अम्स्टर्डम ज़ुइटोस्ट मेयरहॉफ का रहने वाला श्रीमान लेखाराम भोला की मृत्यु अम्स्टर्डम ज़ुइटोस्ट में हो गई है। पारामारिबो में पहले कॉर्नेलिया स्ट्रात का रहने वाला जो था। अर्थी से विदाई लेने के मौका है शुक्रवार, आने वाले शुक्रवार के शाम में 6:30 बजे से 7:30 बजे तक फ्रेदखानस्टांद फन हाल्फ ज़ीफ़न तोत हाल्फ अख्त उइटवार्ड सेंट्रम वेस्ट खार्डे के मुर्दालय ओक मेरवेग 275 अम्स्टर्डम ओस्टडॉर्फ में। और अर्थी के दाह क्रिया आने वाले शनिचर के दिन में 3 बजे ज़ांत्रदख आंस्टांद 3 यूर किए जाएंगे वेस्ट खार्ड क्रीमाटोरियम ओक मेरवेग 275 अम्स्टर्डम ओस्टडॉर्फ में। और जानकारी के लिए तार का नंबर है 06-21-15-61-28 सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए। उजाला रेडियो परिवार भोला के दुख में शामिल है।

इसी तरह से भी आपने सुने हैं गाते चले उजाला रेडियो के जरिए पेश किया गया है। आप सुने हैं उजाला से कॉफी चाय मिदा शो एंड एक बेन नतुलक इंतजार में है ऑफ आनंद चंद्रिका सिंह, जिसके साथ हम बात करने वाले हैं ओवर अलग जाकर दिया टू दून आज के न्यूज या पिछले वीकेंड के बारे में जो न्यूज था उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं एंड नतुलक लुख्तग ऑनवर्प हमने जानी लगा कि कौन अंडरवर्प उले कहेगा, मैं एक हैव वेल एन अंडरवर्प दी एक वर्ग वीक हाथ आल हाथ आंगकोंडर ओके बारे में हम भी मांगे लगा बताएं दूसरों में तो इन ऑफ उजाला रेडियो

यू आर उजाला रेडियो है, सुन वालों हर एक काम काज के लिए आप हमारा वेबसाइट पे जाइए ujala.net। प्रोग्राम में हम आपको नमस्कार सुनाने गुजार हैं मुख सिंह के आवाज में एक्सप्रेस म्यूजिक फॉर्मेशन एक्सप्रेस ook aanwezig op 29 of 30 augustus Ujala's Brasa Mela Fest in Den Haag, GIA Event Center में मुख

कुछ साए, कुछ परछाइयां, कुछ चाहत के सजदे, कुछ बहते बादलों पे रखी उम्मीदें बरसती रहीं, तरसती रहीं। चांद आसमान में जड़े सुराख की तरह झांकता रहा और रात किसी अंधे कुएं की तरह मुंह खोले हांफती रही। रास्ते पांव तले से निकलते रहे, न रुके न थमे, न रोका न पूछा जिंदगी किस तलाश में है। जिंदगी थकने लगी है और ये जिंदगी का जुड़वां उसकी उंगली पकड़े शहर की नंगी सड़कों पर अभी तक कुछ बीन रहा है, कुछ ढूंढ रहा है।

बने रहिए उजाला रेडियो पर, म्यूजिक बोलता रहेगा आपके घरों में, आपके मोटरकार में या जहां पर भी आप हैं।

0: म्यूजिक का सफर उजाला रेडियो पर जारी है.
1: लेडीज एंड जेंटलमैन फ्रॉम सूरीनाम, ही स्पीक्स वेरी लिटिल हिंदी बट इज वेरी फ्लुएंट इन डच. हाउ अबाउट वेलकमिंग मिस्टर रामदेव चाइचू.

0: उजान रेडियो पर ये सॉन्ग अभी अभी खत्म हुआ है।
1: Live vanuit de Hoofdstad.
0: Is jouw business toe aan de volgende stap? Klaar om te groeien of nog groter te worden? Adverteer op Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl. अगर आपके घर पर आने वाले दिनों में किसी का मूर्ण संस्कार है, मूर्ण संस्कार होने वाला है, Ujala Radio पर आप फरमाइश दे सकते हैं। 15 फरमाइश voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl. info@ujala.nl.

0: You are.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ujala Radio, DAB Plus पर देश भर में सुनाई देता है. तू बता दे, सबको इसे बताते. ऑटो में तू सुन सके, तू घर में सुन सके हैं Ujala Radio. और Ujala Radio साथ में ले जाइए, तू चाहे जहां पर जाइए. तू जान है तो Ujala Radio.
3: ये Ujala Radio है और Ujala Radio पर अब यहां से गीतों का सफर जो कभी खत्म नहीं होता शुरू.

इसी तरह से भी आपने सुने हैं गाते चले उजाला रेडियो के जरिए पेश किया गया है। आप सुने हैं उजाला से कॉफी चाय मिदा शो एंड एक बेन नतुलक इंतजार में है ऑफ आनंद चंद्रिका सिंह, जिसके साथ हम बात करने वाले हैं ओवर अलग जाक दिया टू दून आज के न्यूज या पिछले वीकेंड के बारे में जो न्यूज था उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं एंड नतुलक लुख्तग ऑनवेर पर हमने जाने लगा कि कौन अनुवर्प उलेख आएगा, मैं एक हैब वेल एन अनुवर्प दी एक फॉर वीक हाथ आल हाथ आंगकोंडर ओकर बारे में हम भी मांगे लगा बताएं दिसो मतेन ऑफ उजाला रेडियो

बुधवार उजाला रेडियो में हैं सुनवालो। हर एक कामकाज के लिए आप हमारा वेबसाइट पे जाइए ujala.net। प्रोग्राम में हम आपको नमस्कार सुनाने गुजार हैं मुख सिंह के आवाज में एक्सप्रेस म्यूजिक फॉर्मेशन एक्सप्रेस ओक अवेसर ऑफ 29 ऑफ 30 अगस्त उजालास Brasa Mela Fest in Den Haag, GIA Event Center.

उजाला रेडियो के जरिए हमने नफमा सुने हैं और भी खासकर मुक्का सिंह के आवाज में पेश किया गया है सिंह वालों। चलिए प्रोग्राम में हम आपको एक और नफमा सुनाने जा रहे हैं एंड इस बार गाने वाला है निजाम वागिद हुसैन। एंड निजाम वागिद हुसैन इज ऑफ कवेज ऑफ उजाला ब्रासा मेला फेस्ट 29 en 30 augustus in GIA Event Center. Koop je tickets op tijd via brasafest.nl vanaf slechts 8,50 euro. Super early birds. Tickets.

0: छह बजकर 16 मिनट गुजर चुके हैं मेरे प्यारे सिनवालो। उजाला रेडियो है ये और मैं हूं रतन रामदुलारे पांडे। आज बुधवार है मेरे प्यारे सिनवालो, 8 तारीख जुलाई, साल 2026। सेवा करने चले आए हैं फिर एक बार आप सभी को रतन का प्यार भरा नमस्कार और आदाब अर्ज है। आज सेवा हम करेंगे मेरे प्यारे सिनवालो हमेशा की तरह रात्रि में 9 बजे तक, और प्रणाम लेकर हम आज फिर एक बार खिदमत में आपका हम रहेंगे। बैक टू द फ्यूचर लाइफ एंड डायरेक्ट यू आर के स्टूडियो रतनाम से, जहां से ये प्रोग्राम एकदम लाइव बनाया जा रहा है। तो तहे दिल से स्वागत है आप सभी को मेरे प्यारे सिनवालो, जहां पर भी है आप, जिस हाल में आए हैं आप, स्वागत करते हैं आप सभी को। आज फिर एक बार मेरे प्यारे सिनवालो अनु मलिक जी के प्रोग्राम हम सजाएंगे, मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर जिनके नाम पर बहुत सारे हिट सॉन्ग्स हैं। पिछले हफ्ते पहला इनका प्रोग्राम हमने बनाए थे, आज दूसरा, और बहुत सारे खूबसूरत गाने हैं आज के प्लेलिस्ट में मेरे प्यारे सिनवालो। आप ही सुनेंगे कि कितने हिट सॉन्ग्स इनके नाम पर लिखा गया है, और कुछ कुछ गाने ये भी गाते हैं, वो भी अगर हो प्लेलिस्ट में तो आपको हम सुनाएंगे। हमारे ये प्रोग्राम के दौरान मेरे प्यारे सिनवालो हर एक घंटे पर इश्तिहारे आप सुनेंगे, देश विदेश का समाचार, मौसम का हालात और सड़क का क्या हाल है, और उनके साथ साथ भी 7 बजे उजाला रेडियो के जरिए थोड़ा सा मृत्यु समाचार है, मौत की खबरें जो भी पुकारा जाएगा। हियर ऑन यू आर बरिख्त फन ऑफ लाइड नाट ब्रेक फन सेफ हियर ऑफ यू आर। आपकी हर एक जानकारी इंफॉर्मेशन के वास्ते मेरे प्यारे सिनवालो आपकी फरमाइश, जरूरी खबरें, मौत की खबरें, जो भी जानकारी इंफॉर्मेशन आप प्राप्त करना चाहोगे तो आप तार के जरिए अपना कामकाज दिलवा सकते हैं, जानकारी इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं, या तो मेल के जरिए। मेल आप लगातार कर सकते हैं 24 घंटे 7 दिन, किसी भी दिन, किसी भी पल, किसी भी वक्त, info@ujala.nl, और अगर आप तार करना चाहोगे तो सोमवार से शनिवार सुबह में 10 बजे शाम में 3 बजे और वो भी नंबर 020-499-0807 पर, फ्रॉम मंडे टू टू मिड सैटरडे सुमॉर्गन्स 10 uur टू टू मिड इन द मिडडग 3 uur ऑफ 020-409-0807। आपकी फरमाइश, जरूरी खबरें, मौत की खबरें, जो भी आप करवाना चाहोगे, जब भी आपको उजाला रेडियो को जरूरत पड़े, info@ujala.nl आप मेल करें या तो तार करें दफ्तर के दिन, दफ्तर के वक्त, दफ्तर के तार पर 020-409-0807। और स्टूडियो में अगर आप बातें करना चाहोगे व्हाट्सएप के जरिए, दन वेट यू टॉक 020-363-0808, तू जाने है तो। आज का ओपनिंग सिलेक्शन की ओर आपको ले चलते हैं मेरे प्यारे सिनवालो। आई एम जॉन डी मेलो गीत का बोल है, किशोर कुमार, हसीनों के पुजारी किशोर कुमार की आवाज, एक गीत जो समीर और इंदवर साहब जी ने मिलकर लिखा है, और ऑफ कोर्स जिसका संगीतकार है अनु मलिक जी। निकाल रहे हैं फिल्म जिसका नाम है तागटवार, और ये फिल्म मेरे प्यारे सिनवालो 1989 का है, नीहतीन नीहनन तख्त, किशोर कुमार को पेश करता हूं।
1: I'm Tony Nay and Tony Nay Macaroni Nay

हसीनों के पुजारी किशोर कुमार की आवाज। मेरे प्यारे सुनने वालों, आज का ओपनिंग सिलेक्शन एक मस्सी भरी गीत, लेकिन इसमें एक बात भी है कि या इकोमे फनीट ऑफ द वर्ल्ड मीन्स एक एक मैन ईफ अथवर्थ क्वाइट, माफी चाहता हूँ। ये समीर और इंदवर का लिखा हुआ गीत है और अनु मलिक जिसका संगीतकार है। फिल्म ताकतवर का एक नगमा और ये फिल्म मेरे प्यारे से नॉल 1989 का है, 1989। देवद धवन जी इनका डायरेक्ट किया हुआ मूवी जिसमें संजय दत्त, गोविंदा जिन पर ये गीत पिक्चराइज किया गया है, इन दोनों ने काम किया है। अनिता राज के साथ नीलम कोठारी, अनुपम खैर, गुलशन ग्रोवर, परेश रावल, शक्ति कपूर, तनुजा और अनिल धवन। यार ऐसा तुम बहुत छापिन तत्व क्या हल्क से इसकी मस्ती भरी है, लेकिन ऐसा मतलब लोगों का बहुत छापिन। मेरे प्यारे से ये उजाला रेडियो है,

से पेश कर रहा हूं प्रोग्राम बैक टू द फ्यूचर। मैं हूं रतन राम लाड़े पांडे और आज रात्रि में 9 बजे तक हमेशा की तरह ये प्रोग्राम हम सजाएंगे बनाएंगे आप सभी के लिए। ओपनिंग सिलेक्शन आप सभी ने सुनी और फिर एक बार मैं आप सभी को स्वागत करना चाहूंगा और चुन करने के लिए, और उम्मीद और आशा करते हैं कि आप भरपूर भी एंजॉय करेंगे क्योंकि नगमाएं लाजवाब बेमिसाल है। रमेश फ्रॉम द 90s और मिलेनियम के बाद भी कुछ गाने हैं आप तक जो हम पेश करेंगे आज के प्रोग्राम में। समीर का लिखा हुआ गीत की ओर हम आपको ले चलते हैं मेरे प्यारे सुनने वालों। एक फिल्म जिसका नाम है आगाज, और आगाज फिल्म 2000 का है, मिलेनियम ईयर का है। एक नगमा जो बहुत रोमांटिक है और जो बाबुल सुप्री और अलका याग्निक मिलकर गाएंगे अनु मलिक के साज और संगीत पर, कि मन तेरा मेरा मन एक रहे, ये तेरा मेरा मन।

मन तेरा मेरा मन एक रहे, तेरा मेरा मन, मोहब्बत का मतलब समझने लगा हूं और मैं दिल बन के तुझे में धड़कने लगा हूं। बाबुल सुप्रियो और अलका याग्निक की खूबसूरत आवाजें, खूबसूरत गीत समीर का लिखा हुआ दोनों ने मिलकर गाए हैं, और वो भी अनु मलिक जिसका प्रोग्राम हम सजा रहे हैं। मेरे प्यारे सुनने वालों, ग्रेट म्यूजिक डायरेक्टर और सिंगर भी है, कंपोजर, क्या क्या ये नहीं करते हैं। ये था एक नगमा फ्रॉम द मूवी आगाज, और मिलेनियम ईयर का है, 2000 का मूवी, जिसका डायरेक्टर योगेश ईश्वर और सुनील शेट्टी, सुष्मिता सेन, जिन पर ये गीत भी पिक्चराइज किया गया है। इन दोनों ने काम किया है ये मूवी में, और इनके अलावा मैं देखता हूँ अनुपम खैर, नम्रता श्री रोडकर, जूनी वॉकर, शरद सक्सेना, गुलशन ग्रोवर, आसरानी, अलोक नाथ, आशा सखदेव, यूनुस परवेज, शरद कपूर, कौन है विजू खोते, पद्मिनी कपिला, ये नाम पढ़ता हूँ, मुझे कहानी फेस सुन नाम देखे कहा कुपिला ये है कपिला, ओ नहीं आ है या ब्यूटीफुल सॉन्ग मेरे प्यारे सुनने वालों। और मैं जानता हूँ कि ये फिल्म में और भी खूबसूरत नगमाएं और है। आज के लिए इस गीत को हमने चुना है, और उम्मीद और आशा करते हैं कि सुनते वक्त भी बेहद आप सभी ने एंजॉय की है। अच्छे सेफ मिनट ओवर द क्लॉक मेरे प्यारे सुनने वालों, 7 मिनट गुजर चुके हैं, 6:30 ओवर हाफ सेफ हो रहे हैं। एक नगमा जो काफी पॉपुलर हुआ मेरे प्यारे सुनने वालों, असल में ये गीत किशोर कुमार को गाना चाहिए था, फिलहाल रिकॉर्डिंग का दिन किशोर कुमार वहां पर हाजिर नहीं हुए, तार किया गया है उनकी बेटे को, और अमित कुमार जी को, वो भी नहीं आए। तो ये गीत अनु मलिक जी जाकर गाए हैं खुद कविता कृष्णमूर्ति जी के साथ, और गीत काफी पॉपुलर हुआ। लेकिन अनु जी बहुत ट्वाइफल कर रहा था कि शायद मेरी आवाज में ये गीत लोगों को पसंद ना आएगा, तो इन्होंने भी गीत कविता कृष्णमूर्ति और कुमार सानू का भी रिकॉर्ड किया था। लेकिन फिलहाल उन्होंने, प्रोड्यूसर ने भी, डायरेक्टर ने भी जुआ खेला, और अनु जी का वर्जन पिक्चराइज किया गया है ये मूवी में। एंड हुई सेट, क्योंकि गीत काफी पॉपुलर हुआ है, इंदवर का लिखा हुआ एक डांस सॉन्ग, कविता कृष्णमूर्ति और अनु मलिक गीत मिलकर गाएंगे, अनु मलिक की साझ और संगीत पर। नीहती नख्तन तख्तक का एक फिल्म है, 1988, जीते है शान से, जुली जुली, जोनी का दिल तुझ पे आया जुली, तेरे लिए चढ़ जाऊं सुली, तू तो मेरी जान है।

0: Ya, ya, ya. जूली जूली जूनी का दिल तुम पे आया जूली, और मुझे कोई और नहीं चाहिए ना सैंड्रा फ्रॉम बैंड्रा मुझे बस जूली चाहिए। खूबसूरत गीत मेरे प्यारे से नॉल ऑफ पॉपुलर सॉन्ग अन्नू मलिक जी और कविता कृष्णमूर्ति जी का गाया हुआ, इंदुवर ने लिखा, संगीतकार ऑफ कोर्स अन्नू मलिक जी। निकाले हैं 1988 निहती नख्तन तख्त का फिल्म जीते है शान से। मूवी फिल्म केवल शर्मा जी का डायरेक्ट क्या हुआ, जिसमें मिथुन ऑफ कोर्स इन्हीं पर ये गीत तो पिक्चराइज किया गया है मूवी में। इन्होंने काम किया है संजय दत्त जी के साथ, गोविंदा मंदाकिनी, विजेता पंडित, डैनी डेंजोंगपा पैंटल, दिनेश हिंगू, सत्यन कप्पू, विजू खोटे, तिवारी सुधीर भी है। या ब्यूटीफुल मेरे प्यारे सुनने वालों, उजाला रेडियो है ये मेरे प्यारे सुनने वालों। और ले चलता हूं अब की बार गीत जावेद अख्तर जी का लिखा हुआ एक रोमांटिक सॉन्ग। जावेद अख्तर जी इनका लिखा हुआ गीत अन्नू मलिक के साज और संगीत पर गाएंगे कुमार सानू की, जिसकी आने से रंगों में डूब गई हो ये शाम। दिल जले फिल्म का नाम, और ये फिल्म 1996 का है। निहतिन से निहत पेश करता हूं।
1: ये गुलशन फूल कलियां बहार वादियां, ये मौसम खेत हरियाली पहाड़ बर्फ, ये कायनात कुछ भी नहीं,
2: कुछ भी नहीं,
1: कुछ भी नहीं। गरन में वो नहीं,
2: वो है कौन?
3: कप्तान साहब, उस लड़की का कोई नाम तो होगा।
1: नाम

द टाइगर ऑफ बंगाल कुमार सानू की आवाज, मेरे प्यारे सुनने वालों, जिसके आने से रंगों में डूब गई हो शाम। जावेद अख्तर जी का लिखा हुआ या जावेद अख्तर जी का लिखा हुआ गीत रोमांटिक द टाइगर कुमार सानू ने गाए हैं अन्नू मलिक के साज और संगीत पर। 1996 का फिल्म दिल जले से हमने नगमा को निकाले हैं मेरे प्यारे सुनने वालों। नीह तीन से नीह तक का मूवी दिल जले, जिसका डायरेक्टर हरि बवेजा और एक फिल्म जिसमें अजय देवगन, माधो, सुनली बेंद्रे, अमरीश पुरी जी, शक्ति कपूर, परमीत सेठी, फरीदा जलाल, टिन्नू आनंद और गुलशन ग्रोवर ने काम किया है। उजाला रेडियो है ये मेरे प्यारे सुनो, आखिरी गीत पेश करेंगे इस घंटे का और इस आखिरी गीत के बाद हम बढ़ चलेंगे 6 या 7 बजे के ब्रेक की ओर। 7 बजे के ब्रेक की ओर आप सुनेंगे इश्तिहारे देश विदेश का समाचार, मौसम का कहा हालात क्या है और सड़क का भी, और तमाम सूचनाओं के बाद अफसोस के साथ भी थोड़ा सा मृत्यु समाचार है प्रोग्राम में जो पुकारा जाएगा। Here on you are, bericht van overlijden, helaas hier na de commercial break van 7 uur op You Are Ujala Radio. Aangri geet, once again, de Tiger Kumar Sanu, Anand Bakshi ji ka likha hua geet, ab ki baar ye gaayenge, Annu Malik ki saaj aur sangeet par, romantic song, film ka naam Chamatkar, uit 1992-1992, एक फिल्म जिसका डायरेक्टर राजीव मेहरा, शाहरुख खान, उर्मिला मातोंडकर, द ग्रेट शमी कपूर, नसीरुद्दीन शाह, तिन्नू आनंद, देवन वर्मा, इन सभी का एक मूवी है। इस प्यार से तू मेरी तरफ ना देखो वरना तुम्हें प्यार हो जाएगा। पेश करता हूँ खूबसूरत गीत मेरे प्यारे सुनने वालों और मिलते हैं तमाम सूचनाओं के बाद 16:16

अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां है, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश 15 फ्रागे फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूडियो ईमेल नार info@ujala.nl info@ujala.nl 15 फ्रागे फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो।

कल आया था वो आज गया, और जो आज आया है वो कल जाएगा। इसी के साथ सुनिए मृत्यु समाचार।

जिंदगी के साथ गमी है, पैदाइश के साथ मौत। उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार आप सुनिए। अम्स्टरडम से समस्त परिवार भोला बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए शनिचर को 87 साल के आयु में ज़ीफ़नन तख्त ख़ियार और पत्नी श्रीमती कमला भोला कन्हाई का पति लड़कन शारदा धनीराम सिंह भोला, बॉयक भोला, श्यामा भोला और माला भोला के पिता पतो सहायरा भोला भत्तू और तीन दामाद रजेन धनीराम सिंह संदर फान जेल्दरन और रिस्टो लाजारोफ के ससुर सिद्धार्था संजय जोशुआ और सेल्फाना के नाना। अम्स्टरडम ज़ुइटोस्ट मेयरहॉफ का रहने वाला श्रीमान लेखाराम भोला की मृत्यु अम्स्टरडम ज़ुइटोस्ट में हो गई है। पहले पारामारिबो कॉर्नेलिया स्ट्रात का रहने वाला था। अम्स्टरडम से परिवार भोला बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए शनिचर को 87 साल की आयु में ज़ीफ़नन तख्त ख़ियार और पत्नी श्रीमती कमला भोला कन्हाई का पति लड़कन शारदा धनीराम सिंह भोला, बॉयक भोला, श्यामा भोला और माला भोला के पिता पतो सहायरा भोला भत्तू और तीन दामाद रजेन धनीराम सिंह सांदर फान जेल्दरन और रिस्टो लाजारोफ के ससुर सिद्धार्था संजय जोशुआ और सेल्फाना के नाना। अम्स्टरडम ज़ुइटोस्ट मेयरहॉफ का रहने वाला श्रीमान लेखाराम भोला की मृत्यु अम्स्टरडम ज़ुइटोस्ट में हो गई है। पारामारिबो में पहले कॉर्नेलिया स्ट्रात का रहने वाला जो था। अर्थी से विदाई लेने के मौका है शुक्रवार, आने वाले शुक्रवार के शाम में 6:30 से 7:30 तक फ्रेडा खानस्टांड फन हालफ ज़ीफ़न तोत हालफ अख्त उत्फार्ट सेंट्रम वेस्ट खार्दे के मुर्दालय ओक मेरवेख 275 अम्स्टरडम उस दौरप में। और अर्थी के दाह क्रिया आने वाले शनिचर के दिन में 3:00 ज़ांत्रदख आंस्टांड 3:00 किए जाएंगे वेस्ट खार्द क्रीमाटोरियम ओक मेरवेख 275 अम्स्टरडम उस दौरप में। और जानकारी के लिए तार का नंबर है 06-21-15-61-28 सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए। उजाला रेडियो परिवार भोला के दुख में शामिल है।

ये काली काली आंखें और ये हिरनी जैसी चाल, देखा है जब से तुमको जानम बुरा हुआ मेरा ये हाल। कुमार सानू और अन्नू मलिक जी मिलकर गीत गाए हैं और देवखोली जी का लिखा हुआ ये फिल्म फेयर अवार्ड नॉमिनी और जीता हुआ नगमा। अन्नू मलिक के साज और संगीत पर फ्रॉम द मूवी बाजीगर मेरे प्यारे सुनने वालों, और ये फिल्म बाजीगर का एक और नगमा आप तक हम पेश करेंगे। एक छेड़छाड़ सॉन्ग, मस्ती भरी गीत, सफर गोराखपुरी जी का लिखा हुआ एक नगमा, अभिजीत भट्टाचार्य। इज दैट सो? नहीं, दैट इज नॉट यू लिखनी सो। वन फोकस में इज दैट विनोद राठौर, अनु मलिक और नाइटिंगेल आशा जी। मार एक काम और फरखेसन वो नगमा भी है, चलो आपको हम सुनाते हैं। इट इज 5:04 फन हाल फाख मेरे प्यारे सुनने वालों, सर ये 7 बजने में 5 मिनट बाकी है। लाइफ एंड डायरेक्ट यू आर के स्टूडियो रतन राम से, मैं हूँ रतन राम दुलारे पांडे। स्वागत है आप सभी का फिर एक बार, आप सभी को फिर एक बार मेरा प्यार भरा नमस्कार और आदाब प्रणाम। बैक टू द फ्यूचर पेश करता हूँ और आज प्रोग्राम दूसरी बार अनु मलिक जी के हिट सॉन्ग्स आप तक हम पेश कर रहे हैं। चलो, किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने फ्रॉम द मूवी बाजीगर।

या ब्यूटीफुल सॉन्ग मेरे प्यारे सुनने वालों, किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने। नाइटिंगेलाशा जी, विनोद राठौर और अन्नू मलिक जी की आवाजें, सफर गोरखपुरी जी का लिखा हुआ नगमा सभी ने मिलकर गाए हैं, वो भी अन्नू मलिक की साज और संगीत पर। और उससे पहले ये काली काली आंखें, ये गोरे गोरे गाल, टाइगर कुमार सानू देवखोली जी का लिखा हुआ नगमा इन्होंने गाकर सुनाए हैं अन्नू मलिक की साज और संगीत पर। और वो नगमा फिल्म फेयर अवार्ड नॉमिनी सिर्फ नहीं थे, गीत फिल्म फेयर अवार्ड जीता भी। बाजीगर के दो नगमाए मेरे प्यारे सुनने वालों, 1993 का मूवी नेहत इंद्रिय नेहत, अब्बास और मुस्तान बर्मावाला, डायरेक्टर शाहरुख खान, काजोल और कौन है, शिल्पा शेट्टी, राखी, दलीप तहिल, कौन है और दिनेश हिंगू, जॉनी लेवर, इन सभी का एक फिल्म। दिस इज यू आर मेरे प्यारे सुनने वालों, आपको मालूम रहे कि आज प्रोग्राम बना रहा हूं आप सभी के लिए, और वो भी हमेशा की तरह 6 से 9 बजे। कल रात्रि को आपके लिए भी प्रोग्राम बनाएंगे यही स्टूडियो से, प्रोग्राम का नाम दिल की आवाज, अलीन मोरख बेनेकर फन सीफ तो तीन, नीट फन 3 to 12 और फन 8 to 11 नहीं, मोरख हम सेवा में हाजिर रहेंगे 7 बजे, और अगर मौत की खबरें रहा तो मौत की खबरें के बाद 7 बजे से 10 बजे 3 घंटे लगातार दिल की आवाज पेश करने चले आएंगे यही स्टूडियो रोटरडम से, दिल की आवाज एंड 7:11 दन बेने करनी थी, आपको मालूम रहे। अगले मूवी की ओर मेरे प्यारे सुनो, आपको ले चलते हैं, फिल्म का नाम है जानम, और जानम जो है 1993

पागलपन छा गया, ये दिल तुम पे आ गया, रोका मैंने बहुत पर ये न माना, दिल ही तो है। विपिन सखदेवा और अनुराधा पौडवाल जी की आवाजें, खूबसूरत रोमांटिक सॉन्ग फाइज अनवर जी का लिखा हुआ, अनु मलिक के साज और संगीत पर दोनों ने मिलकर गाए हैं। फिल्म का नाम मेरे प्यारे सनोला जानम और ये फिल्म 1993 का है, नीहत इंद्रिय नीहत। मुकेश भट्ट ने प्रोड्यूस किया है, विक्रम भट्ट ने डायरेक्ट किया है और राहुल रॉय, पूजा भट्ट, आशुतोष गौरीकर, दीपक तिजोरी, टिक्कू तलजानिया और पवन मल्होत्रा जी ने काम किया है। सेवा में मेरे प्यारे सुनोलो, हम पेश करने जाएंगे दो इस घंटे का आखिरी नगमाएं और निकालेंगे दोनों नगमाएं फिल्म जिसका नाम है इम्तिहान। इम्तिहान फिल्म नीहत इन फिर नीहत का है, 1994। फैज अनवर जी दोनों नगमाएं को लिखे हैं, एन नतुरलक संगीतकार अनु मलिक जी। अनु मलिक जी संगीतकार, फिल्म का नाम इम्तिहान और ये दोनों नगमाएं चलो हम आगे पीछे आप तक पेश कर रहा हूं। हियर ऑन यू आर बैक टू द फ्यूचर में जो अनु मलिक जी का दूसरा प्रोग्राम हम बना रहे हैं, इनके पॉपुलर सॉन्ग्स आप तक हम पेश कर रहे हैं। पहला गीत कुमार सानू और अगला गीत कौन गाएगा आप सुनेंगे। हियर ऑन यू आर

0: इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा। अमित कुमार की आवाज में गीत आप सभी ने सुने हैं, फैज अनवर जी का लिखा हुआ, और वो भी अन्नू मलिक के साथ और संगीत पर, फ्रॉम द मूवी इम्तिहान। मेरे प्यारे सुनने वालों, हम फिल्म है 1994 और इसका एक वर्जन और है इस तरह आशिकी का, जो कुमार सानू ने गाए हैं। बात यह है कि लड़की हमेशा सब फिल्म में एक रवीना टंडन भैया, और उन दिनों वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, और हीरो सैफ अली खान और सनी देओल। या एंड देन यही है कारण कि गीत अमित कुमार जी ने गाए हैं, और ये गीत जो है सनी देओल पर पिक्चराइज किया गया, और कुमार सानू वाला सैफ अली खान पर। नगमा हमने पेश किया है मेरे प्यारे सुनने वालों, और उससे पहले गीत जो हमने पेश किया था कि दो बातें हो सकती है अब तो जीत या हार की, कुमार सानू की आवाज में, वो भी फैज अनवर जी का लिखा हुआ रोमांटिक सॉन्ग, अन्नू मलिक का लिखा हुआ, फिल्म इम्तिहान मेरे प्यारे सुनने वालों जो 1994 का है, डायरेक्टर हरी बवेजा एंड नतुलक सनी देओल, सैफ अली खान, रवीना टंडन, शक्ति कपूर, गुलशन ग्रोवर, मोहन जोशी, आसरानी साहब जी और दालीप तहिल का एक फिल्म। अभी एक गीत के बाद मेरे प्यारे सुनने वालों,
1: live vanuit de Hoofdstad. Jouw business laten groeien of klaar voor de volgende stap? Ujala Radio helpt je vooruit. Mail naar info@ujala.nl. Ujala Brasa Mila Fest Indoor Summer Edition Den Haag mee. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes and beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in Gia Event Center. Hey you!

चुराया तूने दिल मेरा, दिल मेरा, दिल मेरा जाने जा। उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजें, गुलशन बावरा जी इनका लिखा हुआ गीत दोनों ने मिलकर गाए हैं। अन्नू मलिक के साज और संगीत पर फिल्म का नाम लाज साहब, और ये फिल्म 1992 का है। सुनील अग्निहोत्री का प्रोड्यूस और डायरेक्ट क्या हुआ मूवी, और जिन पर यह गीत पिक्चराइज किया गया है ये मूवी में, जैकी श्रॉफ और नीलम कोठारी। मूवी में और है, मैं देखता हूँ आसरानी साहब जी, मोहसिन खान, इशरत अली, भरत कपूर और साईद जावड़ी। मेरे प्यारे सुनने वालों, उजाला रेडियो पर आप चुने हैं बैक टू द फ्यूचर, आप सुन रहे हैं, और अन्नू मलिक जी जो एक ग्रेट म्यूजिक डायरेक्टर हैं, गाते भी हैं, कंपोज करते हैं, इनके कुछ हिट्स आप तक पेश कर रहा हूं आज दूसरी बार अपनी ये प्रोग्राम में। उम्मीद और आशा करते हैं कि आप भरपूर भी पसंद कर रहे होंगे, सुनते वक्त मजा ले रहे होंगे। हेते 17 मिनट ओवर आख, मेरे प्यारे सुनने वालों, 8:17 व्यतीत हो चुके हैं, और एक मूवी की ओर आपको ले चलेंगे जिसमें से दो नगमाएं आगे पीछे आप तक हम पेश करेंगे। एक बारिश का नगमा है, हीरन होलांद, रोटरडम में बारिश नहीं हो रहे हैं जहां स्टूडियो है रोटरडम, लेकिन मुझे मालूम है और यकीन से ये कह सकता हूं कि इस वक्त कोई सुन रहे हैं प्रोग्राम, शायद भारत देश में, क्योंकि मुंबई में बहुत सारे बारिश हुए हैं, सूरीनाम में भी बारिश हो रहे हैं अलकदा, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी हमारे प्रिय सुनने वाले होंगे जो प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं और जहां पर बारिश हो रहे होंगे। पहला गीत मेरे प्यारे सुनने वाले जो पेश करने जा रहा हूं, वही नगमा की सुन सुन सुन बरसात की धुन, कुमार सानू की आवाज, और उसके बाद आज हमने दिल का हर एक किस्सा तमाम कर दिया, वो भी कुमार सानू है, लेकिन वो आखिरी नगमा कविता कृष्णमूर्ति जी के साथ मिलकर गाएंगे। कतिल शफाई का लिखा हुआ दो नगमाए हैं, संगीतकार नटियल अन्नू मलिक जी, सिर या सर फिल्म का नाम है सर, और ये जो फिल्म है नई घंती का है 1993। पेश करता हूँ दो खूबसूरत नगमाए हीरान युवा बैक टू द फ्यूचर में। Enjoy, मेरे प्यारे सुनने वालों।

आज हमने दिल का हर किस्सा तमाम कर दिया, खुद भी पागल हो गया और तुमको भी पागल मैंने कर दिया। कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति जी की आवाजें, खूबसूरत गीत जो पेश हुआ है, और उससे पहले एक बरसात वाला नगमा कि सुन सुन सुन बरसात की धुन सुन, कुमार सानू की आवाज में। दोनों नगमाएं कतिल शफाई ने लिखा, मेरे प्यारे सुनवालो और संगीतकार जिसका प्रोग्राम हम सजा रहे हैं, बना रहे हैं, अनु मलिक जी संगीतकार। सर फिल्म का नाम सर 1993 का है, नीखत इंद्रिय नीखत, महेश भज्जी का प्रोड्यूस और डायरेक्ट क्या हुआ मूवी, जिसमें नाजीरुद्दीन शाह, पूजा भट्ट, अतुल अग्निहोत्री, परेश रावल, गुलशन ग्रोवर, इन सभी ने जो काम किया है। सुशीला चंद्रिका सिंह जी, एतम सल्फीन डंकीवेल आपके एप के लिए, हिरेंद्रु और चित्रा जी एटमार सबरूक डंकीवेल आपके एप के लिए, मरखरी जी डंकीवेल आपके एप के लिए, एलिन जी एट हार्लेम बहुत बहुत धन्यवाद आपके ऐप के लिए। आईफी जहांगीर शुक्रिया, आईफी जहांगीर राम सनाम डंकीवेल आपके ऐप के लिए, प्रभा जी एम सनाम सेंद्रम बहुत बहुत धन्यवाद आपके ऐप के लिए, और दनहा शहर का मिक डंकीवेल मिक फोड़ी ऐप, आप सभी भरपूर एंजॉय करें मेरे प्यारे सुनने वालों, क्योंकि हम तो आखिरी घंटे में आन पड़े हैं और इस आखिरी घंटे का आखिरी आधे घंटे में हम आन पड़े हैं। कोशिश करता हूँ आपको कुछ और भी खूबसूरत नगमाएं सुनाने का। फिलहाल तो हम आपको ले चलेंगे एक फिल्म के ओर मेरे प्यारे सुनने वालों। फिल्म का नाम है खुदार और ये फिल्म 1994 का नीघतिन फिर नीघत। नगमा देवखोली, राहत इंदौरी और इंदौर जी का मिलन, इन सभी ने मिलकर गीत लिखा। सोनू निगम गीत गाएंगे, अन्नू

अपनी गम मेरे प्यारे सुनवालो, वो आंख है क्या तेरी सूरत नहीं जिसमें डट भरे गीत देवखोली राहत इंदौड़ी और इंदौर साहब जी का मिलन गीत सभी ने लिखा, सोनू निगम जी ने गाए हैं अनु मलिक की साज और संगीत पर। 1994 का फिल्म खुटार से हमने नगमा को निकाले। इकबाल दुरानी जी ने डायरेक्ट किया है गोविंदा करिश्मा कपूर कादर खान का एक फिल्म। मेरे प्यारे सुनो, आखिरी दो नगमाएं पेश करूंगा और इस दो आखिरी नगमाएं के बाद हम यहां से रुखसत होंगे स्टूडियो से बैक टू द फ्यूचर। हम अगले हफ्ते फिर 15 तारीख पेश करेंगे। मोरखनाफंत 9 juli ben ik er, रात्रि में 7 बजे, niet 8 uur, niet 10 uur, nee, morgenavond 7 uur in de avond, hazir rahenge lekar program Dil Ki Awaaz। आखिरी मूवी आ गले लग जा, ये भी 1994 का मूवी है, 1994, हमीद अली जी का डायरेक्ट किया हुआ, जुगल हंसराज उर्मिला मटोंकर का एक फिल्म। ये फिल्म से दो नगमाएं नवाब आरसू और अनवर सागर जी का लिखा हुआ, जिसका संगीतकार है अनु मलिक, कविता कृष्णमूर्ति, पहला गीत विद अभिजीत और दूसरा गीत विद कुमार सानू पेश करता हूं। मेरे प्यारे सुनो, राह पुल तो फिर खिलेंगे और रहा ये खूबसूरत जिंदगी तो हम जरूर फिर कल मिलेंगे। सभी को रतन का प्यार भरा नमस्कार और खुदा हाफिज़। टेक केयर और रिमेंबर, आई लव यू ऑल।

इसी तरह से भी आपने सुने हैं गाते चले उजाला रेडियो के जरिए पेश किया गया है। आप सुने हैं उजाला से कॉफी चाय मिदा शो एंड एक बेन नतुलक इंतजार में है ऑफ आनंद चंद्रिका सिंह, जिसके साथ हम बात करने वाले हैं ओवर अलग जाकर दिया टू दून आज के न्यूज या पिछले वीकेंड के बारे में जो न्यूज था उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं एंड नतुलक लुख्तग ऑनवर्प हमने जानी लगा कि कौन अनुवर्प उले कैगा मैं एक हैव वेल एन अनुवर्प दी एक फॉर वीक हाथ आल हाथ आंगकोंडर ओकर बारे में हम भी मांगला बताएं दिस ओमेटेन ऑफ उजाला रेडियो

यू आर उजाला रेडियो है, सुन वालों हर एक काम काज के लिए आप हमारा वेबसाइट पे जाइए ujala.net। प्रोग्राम में हम आपको नमस्कार सुनान गुजार हैं मुख सिंह के आवाज में एक्सप्रेस म्यूजिक फरमासी एक्सप्रेस ओक अवेसर ऑफ 29 of 30 augustus Ujala's Brasa Mela Fest in Den Haag via Event Center mee. Mukha

0: ये आज तुम्हें क्या हो गया है? तो अपने दिल को समझाओ ना।
1: मचल उठा ये दिल ना।

सुनो, मेरी एक बात मानोगे? मानोगे ना? तुम्हें अंधेरे में नींद नहीं आती तो मैं रोशनी किए देती हूँ।